प्रजामेरीर्षायुरुग्रा रिचक्षसंत्वा हविषा विधेमा अपैतु मृत्युरमृतं नागं वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पन्नं मनः।

हमिषा विधेम अपैतु मृत्युरमृतं नागन्वैव स्वतो नो अभयं कृणोतु पन्नं।